0: फिलहाल ये वाजे नहीं हो सका कि हादसा किस वजह से पेश आया है।
1: मेटा भारत में बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल पर मबनी इश्तहारात नशर करना जारी रखे हुए है। अमरीका में कायम इंसानी हकूक की तंजीम टेक ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट की जानब से जारी करदा एक हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मेटा ने गुज़िश्ता 10 माह के दौरान भारत समेत कई ममालिक में मस्नूई जहानत से तैयार करदा बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के मवाद पर मबनी सैकड़ों बामुआवजा इश्तहारात नशर किए हैं। ये रिपोर्ट भारतीय हुकूमत की जानब से मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के इस्तेहसाल पर मबनी तमाम इश्तहारात और मवाद को हटाने की हिदायत देने के 2 माह बाद सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इन खिलाफ वर्जियों की निशानदही और हुकूमती अहकाम के बावजूद सितंबर के अवायल में भी भारत में बच्चों के इस्तेहसाल पर मबनी नए इश्तहारात का सिलसिला जारी रहा। तहकीकात से मालूम हुआ है कि इन इश्तहारात के पीछे चीन में कायम मसनूई जहानत की एप्लीकेशंस और एजेंट्स मुलविस हैं। इस संगीन सूरत हाल के पेश नज़र जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन नामी तंजीम के बानी भवन रभू ने ऐलान किया है कि उन्होंने इस मामले पर भारत की सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इसके साथ ही सदा तुर्की से उर्दू में खबरें खत्म हुईं। फिलिस्तीन की तारीख और पसे पर्दा कहानियां।